चार चकारे और छड़ने हैं, और जिस तरह सूरमे जंग विच जोश दे नाल अगे वधदे हुए चकारे छड़दे हैं, इस तरह ही सारिया ने हाथ खड़े करके चढ़दी कला विच चकारा छड़ना है, ताकि यह साड़ी गूंज कलगियां वाले दे चरणा तक पहुंचे। पाकिस्तान दे नाल जिस वेले 1972 दी लड़ाई लगी ता फौजी जिहड़े सन पिछा हटे, ता उस वक्त एक हिंदू कैप्टन ने भजदे हुए फौजियां नूं इह जकारा गजा के वंगार पाई सी कि कलगियां वाले दा जकारा सुनो और वापस परतो अपनी चौंकी ते। और यह हकीकत है कि वह जिहड़ा जकारा हिंदू कैप्टन ने छड्डिया उस नूं सुन के भजदे हुए फौजी फिर वापस आए और इस चौंकी ते आके फिर हिंदुस्तान दी फौज ने कब्जा किया। आओ ਇਹ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਨਾਦ, ਇਹ ਜਕਾਰਾ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਆਪਾਂ ਗਜਾਈਏ।

झूठ ना बोली संगत विच कलोता है। हाथ जुड़ गए। बाबा जी मां जान के सेवा कदी नहीं कीती। ते ब्रह्म ज्ञानी बाबा आनंद सिंह जी आखण लगे, ओए चनना मां नू तके मार के रब नू घरों बाहर कढ के ते संतां दे डेरियां ते सुख भालदा फिरदा है, वो तेरी मां नहीं वो तेरा रब है। जे तू सुखां दे नाल झोलियां भरनिया ने ते जा अपनी मां दी सेवा कर, तेरा रब तेरे घर बैठा है। ते सतसंगियो कलगी तर पातशाह भी यही आख रहे ने, कहिंदे जिहड़ा सिंह अपनी माता पिता दी सेवा नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं है। जिहड़ा अपने बजुर्गां दी सेवा नहीं करदा सत्कार नहीं करदा उहदे नाल मेरा कोई संबंध नहीं, कोई रिश्ता नहीं। उहदे नाल रिश्ता है जो अपने माता पिता दा सत्कार करदा है, अपने बजुर्गां दी संभाल करदा है।

क्योंकि श्वासा का कोई पता नहीं, मत के जापे शाह आवे कि ना आवे राम ते जिस मालक ने इस लोक विच ते परलोक विच सानू छुड़ाउणा है, उस मालक का नाम किवें विसरे ए प्यार वालियां रूहां दे जीवन है।

इसने हुक्का दिता ना, आवाज मारी ना, तां सच्चे पातशाह ने कहा कि कैसी एक नवी चीज बाजार विच बिकन वास्ते आ गई है। कैसी चीज है? क्योंकि सतलू सोते पैसे आनंदपुर दियां गलियां विच बाजारां विच सब्जी विकदी है, कपड़ा विकदा है, शहद माखियों विकदा है, दुध विकदा है, रेशम और पट विकदा है। लेकिन अज सवेरे सवेरे अमृत वेले एक ऐसी साध है, कैसा होगा इन्हें? इर्द गिर्द वेख के नंद लाल ने फिर आवाज मार दी, कहन लगा

पाकीजा नहीं है, इसलिए इसनु पाकीजा कर हाथ जोड़ के आखन लगे मेरे मालिक अपने योग बना लो जिदा का तुम चाहिए बना लो। सतगुरु जी मैनु कोई तरकीब दस दो, सुझाव दे दो। सच्चे पातशाह कहन लगे मेरा खालसा बैठा ना, मेरा प्यारा खालसा, प्रभु का प्यारा खालसा बैठा ना। नंद लाल तेन एक जुगत दसदा हां, लंगर चले जा, लंगर जाके मेरे खालसा दे जिन्ने वधिया बर्तन थाल गिलास कोले मन ला के साफ करेगा और जिन्ना वधिया करेगा उन्ना तेरा कासा है कलम जल्दी मुरबर हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा। बस इसने गल पले बन ले, सीधा सीधा हां सतगुरां दे लंगर विच चले गया। जानदिया इसने अपने बस्तरां की कोई परवाह नहीं की थी, अपनी बुजुर्गी वाल नहीं तकिया, ये बर्तन साफ करन लग पिया। कई दिन लंघ, कई दिहाड़े गुजर गए, कई दहाके गुजर गए, इसनू लंगर की सेवा करदे साल गुजर गए। एक दिन एक व्यक्ति ने आके आख्या आखिर तू इथे नंदलाल होना कितने, खालसा जी तुसी वेख्या ही नंदलाल, सिंह साहब तुहानू कितने पता ही नंदलाल दा। आखन लगे गुरु ने एक फरमान कर दिता, हुक्म कर दिता, लंगर विच होवेगा जाके देख लो। बुजुर्ग ने जाके वेखे ना तो लंगर विच बर्तन पिया साफ करे नंदलाल, गिट गिट उसते सुआ चढ़ी हुई, जूठा चढ़िया हुई खालसे दियां। पर गुरु का बचन उसने पले बन लिया कि जिन्ने वधिया बर्तन साफ करांगा मन उन्ना वधिया साफ उजला हो जाएगा। इसलिए हुणे गल घट करता है, बचन घट करता है, बर्तन ज्यादा साफ करता है। उस व्यक्ति ने मोढे हाथ ला के आखिया नंद ला लो ये बोले ना। आखन लगे मैं पुछदा जी तुसी नंद ला लो, बोलदे ने। कहन लगा जिस दिन का मैं गुरु दर घर विच आ गया हां मैनू इस गल की सोझी पै गई है कि बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सो, इसलिए मैं बोलदा। नंद लाल कोई ते गुतू कर, कोई ते बचन कर। इसने पिछे मुंह करके उस बुजुर्ग आगरे तो आए वाले कहन लगा हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की, हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की, ख्याल यार अपना हर वक्त मेहमान रहता।

निरंदा अगर तरना चाहते हो तो नाम जपो, अगर तरना चाहते हो तो सिमरन करो, क्योंकि सिमरन तो बिना तुसी तर नहीं सकते। ते भगत जी ने बड़े कमाल की गल कही है, आओ सारे करोड़ों संतों पवित्र मिलके आखो।

नाम तेरो आसनो। हे मेरे ठाकुर बैठल वाहिगुरु, जिहड़ा पंडित ने आसन लाया है ना, मैं तेरे नाम का ही आसन बनाया है। नाम तेरो आसनो, मैं उस नाम नु आसन समझना। नाम तेरो उर्सा, उर्सा कहते ने बड्डी नु जिहदे नाल किस रगड़िया जाता है। नाम तेरो उर्सा, फिर कहते नहीं नाम तेरो केसरो लै छिड़कारे, कहते नहीं वह केसर रगड़ के तेरे उत्ते छिड़का कर दे ना, मैं तेरे उत्ते नाम का ही केसर छिड़क देता है। मैं सब कुछ नाम नहीं समझे। अगे भगत जी कमाल की गल कहते हैं।

हे मेरे मालिक, सब तेरे कोलों मंग रहे हैं। ते मंगिया उथों ही जांदा है जिथों दात मिलती हो, जिथों मंग पूरी हो जाए। इसलिए सब तेरे कोलों मंग रहे ने। पर गल कमाल दिए मंगल वाले बहुतात विच हन, जिन्हां दी कोई गिनती नहीं, पर देन वाला इको ही। ते हर मंगते दी मंग वखरी है, ए नहीं कोई कोई मंगदा होवे। जिन्ने मंगण वाले ओनिया ही उन्हां दियां मंगां। पर हे परमात्मा, तू देन वाला एक है, कुर्बान हां तेथों जो तू सब दियां मंगा कबूल कर रहे है। हुण गल मंगण दी चली है ते साहब कहिंदे ने, आ हुण विचार इस गल दी भी कर ली है, परमात्मा देन तो इनकार ते नहीं करदा, पर असी मंगना किवें है ते मंगना की है।

ऐसा नहीं कि मंगना माड़ा, हां मंगना चाहिए, पर मंगना किवें है ते मंगना की। हुण साहब गिनती पहले उन्हां दी दस देने कि जो मंग रहे ने, कोई मान मंग रहे, मान दा भाव है इज्जत रिस्पैक्ट, तान मांगो, तान दा भाव है जोर विल पावर ताकत, धन लक्ष्मी सुत दे, कोई धन मंग रहे, मनी माया मंग रहे, सुत कहिंदे ने कोई पुत्र मंग रहे, लक्ष्मी कहिंदे ने कोई स्त्री मंग रहे है। हे परमात्मा, जिन्ने मंगते उन्नियां उन्हां दियां मंगां, हर कोई मंग अलग अलग कर रहे है, पर सब दियां मंगां तू पूरी करी जा रही। मान मांगो, मान इसलिए मंगया क्योंकि मान तो बिना, इज्जत तो बिना जिंदगी अधूरी। संसार विच रिस्पैक्ट इज्जत होनी बड़ी जरूरी। आ तुसी वेख लो, निर्धन नू, कमजोर नू कदी किसी ने सन्मानिया नहीं, नेड़े बिठाया नहीं, इसलिए कहिंदे ने मान मंगे आ। फिर तान मांगो, तान कहिंदे ने जोर भी मंगे आ, जो तेरा दिता होया मान बरकरार रह सके, उन्हूं सांभ सका। धन लख भी सुत दे, धन भी होना बड़ा जरूरी है। साहबाणी विच कहिंदे ने ना, निर्धन आदर कोई ना दे, लाख जतन करे चित ना धरे। निर्धन नू, गरीब नू कोई आदर नहीं दिंदा, इसलिए इन्हां चीजां दा होना बड़ा जरूरी है। मान मांगो, तान मांगो, तन लक्ष्मी सुत दे, परमात्मा दे तन होवे, लक्ष्मी स्त्री भी चाहीदी है। भगत अन्ना जी कहिंदे ने, घर की गेहन चंगी जन तन्ना लेवे मंगी। घरवाली भी चंगी होनी चाहीदी है, सुगुण सुशील सियाणी होनी चाहिए।

मंगी जाए। केसो केसो कुकिए ना सोइए आसार रात दिवस के कुकने कबू को सुने पुकार, कड़ी ते पुकार सुनेगा ना, बस मंगता मंगी जाए, मंग बार बार दोहराई जाए, किवे मंगे बबीहे दी तरह। उस चातक दी नहीं आई जिड़ा बार बार प्यू प्यू करदा रहिंदा, मंगी जांदा है ना, दिन विंदा है ना रात विंदा है, वो पुकारा करी जांदा है। बबीहा बोल रहा सी, किसी ने आवाज मारी ते आखिया बबीहा क्यों प्या बोलना है? कहना एक बूंद चाहिए, एक बूंद ली बोल रही, मंगती का पहला गुण है जी। कहने संसार विच कितना बड़ा समुद्र है, नदियां नाले ने, सागर हैं, तालाब हैं, वो कितों भी एक घुट पानी का पी के अपनी प्यास बुझा ले। कहने नहीं।